0: का धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: Looking for something truly unique this season? Then you need to visit Fab India Expo, located opposite Medford Gas Station, Shugwanas. Brand new containers have just arrived, packed with one-of-a-kind garments you won't find anywhere else. Whether you're shopping for something stylish, traditional, or custom-made, we've got you covered with made-to-order pieces tailored just for you. And it doesn't stop there. Take a stroll through our full food court, offering delicious options for the entire family. From savory bites to sweet treats, there's something for everyone. Plus, don't miss our big sale on furniture. Upgrade your home with beautiful pieces at unbeatable prices. So come on down to the Fab India Expo, located opposite Medford Gas Station, Shugwanas, where culture, style and savings come together.
2: माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं। क्यों जा रहे हो?
3: क्योंकि नियत ही मेरे बस में नहीं
4: अंत में आरंभ है
3: एक और प्रेम है
4: आरंभ में ये अंत
3: और दूसरी ओर कर्तव्य
5: मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूं जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा
3: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा सभा में चीर हरण किया इन्होंने द्रौपदी का और सारे धर्म अधिकारी चुप रहे
6: छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र
3: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी

पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: योर नंबर वन द वन एंड ओनली हिंदू रेडियो स्टेशन रेडियो जागृति 102.7 FM।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: भागवत एंड सन्स ज्वेलर्स ऑफ 68 मेन रोड शुगोनस ऑपोजिट द शुगोनस मार्केट कॉल देम एट 6654103 फॉर ऑल योर गोल्ड सिल्वर डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स वेडिंग रिंग्स इयररिंग्स पेंडेंट्स एंड ट्रेडिशनल फिलिग्री आइटम्स कस्टम मेड ज्वेलरी बेरा स्पेशलिस्ट एंड ब्रांड नेम पेन्स फ्री एनग्रेविंग ऑन ऑल आइटम्स परचेस फोर जनरेशन सर्विंग द कम्युनिटी विद इंटेग्रिटी एंड प्राइड भागवत एंड सन्स ज्वेलर्स

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुनी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। पकड़ो भाई सुपर।
1: Ha ha ha!

मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी. मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ. थैंक यू सो मच, आई लव.

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओ, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

0: आपका धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं। क्यों जा रहे हो?
2: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
3: अंत में आरंभ है,
2: एक और प्रेम है।
3: आरंभ में ये अंत
2: और दूसरी ओर कर्तव्य।
4: मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा दे मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा।
2: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा। सभा में चीर धारण किया इन्होंने द्रौपदी का।

0: जय परम सबल श्रेय आदि शक्ति नव दुर्गा माता की जय परम सबल श्रेय उमापति महादेव की जय।
1: बाबा

पर ब्रह्मनिष्ठ द डिवाइन लॉर्ड हु इज द सुप्रीम सोल ही हु इज बियॉन्ड एवरीथिंग द लॉर्ड हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन अमंगस्ट योग सिद्ध चर भक्तस द योगीज द अकॉम्प्लिश्ड वंस द डिवोटीज They all chant the name of the Lord, Sri Krishna, again and again to such an exalted Lord. I offer my humble salutation.